स्पेशल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ गुड।

0: अहिले
1: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
1: राम्रोसँग ल गाइदिए,
2: साथै
1: मुच्छेँ।